इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच, और मेरे साथ बैठे मेरे सहयोगी
1: राजन बाजी, मैं आपके साथ हूं अभी इस प्रोग्राम में।
0: दोस्तों, इस बार हम फिर से एक नया सीरीज हम लेके आए हैं और उस प्रोग्राम का टाइटल है MBA द डिफरेंशिएटर। और 96% ऑफ द एम्प्लॉयर सेड हायरिंग MBA क्रिएट वैल्यू फॉर देयर कंपनीज। तो हम इस सीरीज में अभी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है कि मुझे MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा बाजी सर, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो हमें पहली बार सुन रहे होंगे रेडियो पे।
1: सर, मेरा इंट्रोडक्शन फिर एक बार मैं देता हूँ। मेरा MBA हुआ है और एडिशनली मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री है, और मेरा 25 साल का भी एक कॉरपोरेट लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड आई एम हेडिंग अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी राइट नाउ।
0: जो सुनने वाले उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दो तीन शब्दों में। मेरा भी कॉरपोरेट में जो एक्सपीरियंस है, 18 साल का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है, और मैं 3 साल एंटरप्रेनर भी रह चुका हूँ, और अभी मैं ऐसे फ्रीलांसर में जाके कॉरपोरेट्स में और बी स्कूल्स में वर्कशॉप्स लेता हूँ, और उसके अलावा मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी काम करता हूँ। अब सबसे पहले आता है कि रीजन टू स्टार्ट दिस सीरीज MBA द डिफरेंशिएटर, ये बाजी सर और मैंने ये क्यों सोचा और इस चीज को क्यों हम सोचे, उस बारे में हम थोड़ा सा एक जो हम सुन रहे हैं, हमारे श्रोता हैं, दोस्त हैं, वो सुन ले, ध्यान से सुन ले कि उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये होता है कि जैसे कोई भी बी करे चाहे बी कॉम करे, यानी किसी भी स्ट्रीम में कोई ग्रेजुएशन करता है, तो दो चीज दिमाग में आने लगती है उस स्टूडेंट के दिमाग में बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: पहला वो सोचता है कि आगे मैं कोई फर्दर एजुकेशन में करूं या नहीं करूं, या सीधा दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं कहीं जॉब में ले लूं। आपका क्या विचार है इसमें?
1: राइट। अभी सर, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा तो ये अनुभव रहा है कि अभी आज के जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन के बाद डेफिनेटली हायर एजुकेशन का सोचते ही है और करते ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो आज के वक्त की डिमांड है।
0: जी जी,
1: इट्स अ क्वाइट कॉमन फिनोमेना एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ग्रेजुएशन के बाद क्या करें।
0: राइट। तो उसमें एक दो सेंटेंस में और बोल देता हूँ कि दोस्तों जो हमको सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। आप अगर इस दुविधा में फंसे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि क्या करना है मुझे, जॉब करूं या आगे की मैं पढ़ाई करूं, अगर मुझे पढ़ाई करना है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे MBA करना चाहिए, मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए, तो उस दुविधा को इस सीरीज में हम पूरी तरह से आपका सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। जी बाजी सर, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से?
1: 100% सर, 100%
0: जी। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी सबसे पहला एक टॉपिक है जिसको हम आगे लेके बढ़ेंगे, व्हाई टू डू MBA। इसके 5 रीजंस हैं, और इस 5 रीजंस को मैं और बाजी सर आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिसनर हैं उस चीज को पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करेंगे, व्हाई टू डू MBA 5 रीजंस।
1: राइट बाजी सर? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली
0: जी।
1: इसमें मैं चालू करता हूं सर
0: जी।
1: पहला मतलब इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि प्रोफेशनल और स्पेशलाइज्ड डिग्री ये जो हम लोग ले रहे
0: जी,
1: तो इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या बेनिफिट है?
0: राइट।
1: तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ सर
0: जी जी।
1: जैसे आप देख रहे हैं, नाउ टाइम हैज चेंज ड्रास्टिकली, है ना, द एंटायर इंडस्ट्री इज वेरी डायनामिक नाउ,
0: राइट,
1: एज कम्पेयर टू 20 ईयर्स बैक
0: जी।
1: और आज का हम लोग यदि देखे
0: जी,
1: और दोनों का थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं, तो आज का समय काफी बदल चुका है
0: जी जी जी।
1: पहले जैसा अभी नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं रही है, और टाइम हैज बिकम वेरी फास्ट,
0: राइट,
1: एंड हर चीज फास्ट हो गई है
0: जी,
1: एंड कंपनी आल्सो हैव टू यू नो डिलीवर द रिजल्ट वेरी फास्ट।
0: एग्जैक्टली।
1: तो इसका इम्पैक्ट अभी एम्प्लॉय पे क्या आया है
0: जी,
1: है ना, तो एम्प्लॉय हैज टू डिलीवर रिजल्ट वेरी फास्ट।
0: करेक्ट, सही कह रहे हैं।
1: तो अभी हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। अभी अपने जो श्रोता है वो जो नए मतलब फ्रेश ग्रेजुएट होके, है ना, दे आर प्लानिंग देयर करियर
0: जी जी,
1: है ना, और वो सोच रहे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो MBA इसलिए भी करना चाहिए कि दिस प्रोफेशनल डिग्री एड्स वैल्यू आपके नॉलेज में, वो एक वैल्यू एडिशन करता है
0: जी जी।
1: और कंपनी या फिर कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखे
0: जी,
1: तो कंपनी लुक एट द थिंग्स लाइक यू नो इफ समबडी हैज टू डिलीवर द रिजल्ट फास्ट, ही नीड टू हैव सम बैकग्राउंड
0: जी,
1: सम प्री नॉलेज।
0: राइट।
1: तो MBA जो है इट गिव्स वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज।
0: राइट।
1: जैसे कोई फाइनेंस करता है MBA फाइनेंस, तो इट गिव्स द स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द फाइनेंस,
0: करेक्ट,
1: फाइनेंशियल मैनेजमेंट
0: जी जी।
1: कोई MBA मार्केटिंग करता है तो इट गिव्स वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग,
0: एब्सोल्युटली राइट,
1: लाइक दैट।
0: तो
1: ये, एंड इफ समबडी हैज सम प्री नॉलेज, वो फास्ट ग्राफ करता है और रिजल्ट भी डिलीवरी फास्ट करता है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: एज कम्पेयर टू ओनली ग्रेजुएट।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बाजी सर ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज को टच किया हुआ है। प्रोफेशनल डिग्री है ये, स्पेशलाइज्ड डिग्री है और स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड डिग्री है जिसकी आपकी नॉलेज बढ़ती है। बाजी सर सही कहा,
1: सही एकदम 100% सही।
0: अब दूसरा पॉइंट जो है मैं टच करता हूँ उसमें है, दूसरा पॉइंट होता है हाई एम्प्लॉयमेंट रेट। हाई एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब ये होता है कि अगर आप एमबीए करते हैं, मैं एक सिनेरियो ले लेता हूँ, है ना, जैसे बाजी सर और मैंने, मेरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैं 18 साल कॉर्पोरेट में किया, उसके बाद हजारों लोगों को रिक्रूट भी किया, इंटरव्यू भी लिए। अब उस चीज पे आते हैं कि हाई एम्प्लॉयमेंट रेट होती क्या है। अगर मुझे बंदा कोई अगर मुझे चाहिए रिक्रूट करना है, उनका ग्रेजुएशन लेवल अगर एक ही है, दोनों ने एक ही ग्रेजुएशन किया है, लेट अस से फॉर एन एग्जांपल बी किया हुआ है, और दोनों के मार्क्स जो एकेडमिक्स भी परसेंटेज वाइज भी सेम है, अब लें किसको, ये बड़ी दुविधा हो जाती। इंटरव्यू भी दोनों का अच्छा गया है, दोनों पैरेलल है, अभी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। पर उसमें से अगर एक कैंडिडेट, उसमें से अगर उसके पास में अगर एमबीए की अगर उसकी डिग्री अगर एडिशनल होगी तो ही स्कोर्स और शी स्कोर्स द पॉइंट।
1: राइट राइट।
0: तो हाई एम्प्लॉयमेंट रेट में यह तो है कि जो आपकी एंट्री लेवल होती है, जो जिसे कहेंगे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ रिज्यूम हो जाता है या पहला जॉब हो जाता है, उसमें आपकी बहुत जबरदस्त मदद करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप केवल बी करके जा रहे हैं जॉब के लिए, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा, पर साथ में अगर आपका एमबीए भी है तो आपकी जो परसेंटेज है बहुत हाई परसेंटेज बढ़ जाते हैं कि आपका शॉर्टलिस्ट होगा और आप अपॉइंट किए जाओगे।
1: इसमें मैं एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं सर।
0: जी,
1: एक 20 साल पहले द पीपल हु वेर ऑप्टिंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन,
0: करेक्ट
1: है ना, तो 20% के आसपास है ना, एंटायर कैटेगरी में 20% लोग है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे।
0: जी जी,
1: स्पेशलाइज डिग्री में जाते
0: जी,
1: थे।
0: जी जी,
1: 10 साल पहले वही रेट था अराउंड 40%।
0: एग्जैक्टली।
1: और आज के दौर में वो रेट है मोर देन 60-65%।
0: एग्जैक्टली।
1: तो 60-65% लोग आज की डेट में हायर एजुकेशन, स्पेशलाइज एजुकेशन लेते ही है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही।
1: इफ यू आर नॉट इन 60-65%, इफ यू आर इन 45%, डेफिनेटली इट रिड्यूसेस योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड इन नटशेल ये होता है कि अगर आप एमबीए करते हैं तो आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी ध्यान में रखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी जो है
1: exactly.
0: वो बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ जाती है।
1: हाँ,
0: जी जी। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे जाते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी
0: जी। तीसरा पॉइंट आता है लर्निंग इन प्रैक्टिस। अब इसमें दोस्तों हम इस बात को शेयर करेंगे, हम बहुत अच्छे से इसलिए शेयर कर सकते हैं कि जैसे बाजी सर ने बताया एमबीए है, मैंने भी एमबीए किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद। अब उसमें सीखने को क्या मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, खासकर एमबीए में।
1: राइट राइट।
0: ग्रेजुएशन होता है जो 90% जो भी ग्रेजुएशन एकेडमिक कोर्सेस हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल है।
1: राइट
0: आप इत्तेफाक रखते हैं भाजी?
1: 100% 100%
0: प्योरली थ्योरेटिकल है। अब एमबीए में ऐसा होता है कि उसमें जो है आपको प्रैक्टिस किया जाता है, जो सिनेरियो दिए जाते हैं, रियल सिनेरियो दिए जाते हैं, ऑन जॉब आपकी प्रैक्टिस होती है और आपकी स्किल्स जो है डेवलप होती है।
1: राइट राइट।
0: अब जो सुन रहे वो सोच रहे होंगे कि कैसे, अभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप ले लेंगे, फॉर एन एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, आईएम्स जो होते हैं कॉलेज जो एमबीए कराते हैं, वो एक साल में कम से कम 400-425 आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देते हैं एक साल में, एक एकेडमिक ईयर में।
1: राइट राइट।
0: और उससे नीचे वाले 20 स्कूल्स में आप अगर आएंगे तो 200-250 प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स आपको पर ईयर होती है।
1: राइट राइट।
0: तो उसमें जो सीखने मिलता है, मतलब लर्निंग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं सीख रहे हैं, इस वाइस वर्सा। आपके क्या विचार है बाजी सर?
1: एमबीए पर्टिकुलरली हम लोग बात करें सर, तो एमबीए में एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्किल आपको मिलता है।
0: एब्सोल्युटली।
1: एक रियल प्रॉब्लम पे या फिर रियल केस स्टडी पे आपको
0: Correct.
1: है ना स्टडी करने के लिए मिलता है।
0: राइट राइट।
1: एंड व्हिच इज रिलेवेंट विद द करंट सिनेरियो एज वेल एट करंट बिजनेस कंडीशंस।
0: जी जी।
1: सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन वी यू गेट इनटू द यू नो मार्केट, व्हेन यू गेट इनटू द एक्चुअल जॉब।
0: जी।
1: तो ये आपका करंट सिनेरियो वाला नॉलेज बहुत फायदेमंद या फिर यूजफुल साबित होता है।
0: जी जी। और उसमें एक और ऐड करना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट को ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जिनको रिलेवेंट सिनेरियो का एक्सपीरियंस है और उसको थोड़ा बहुत हैंडल कर चुके हैं।
1: Exactly.
0: जो आपको एमबीए करने से ही आपको मिलता है।
1: 100%।
0: जी। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: तो चौथा पॉइंट है, फर्ज करो कि सिनेरियो कि आप जॉब कर रहे हैं कहीं और ज्वाइन कर लिया, आपका पहला ही जॉब है।
1: राइट राइट।
0: तो उसमें चौथा पॉइंट आता है प्रिफर्ड फॉर प्रमोशन। प्रिफर्ड फॉर प्रमोशन अभी हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि हम दोनों ने कॉर्पोरेट में अगर दोनों का एक्सपीरियंस जोड़ लेंगे तो 40 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: राइट राइट राइट।
0: शुरुआत के 4 से 5 साल जो आपका कॉर्पोरेट का लाइफ होता है, आप ऐसे इंडिविजुअल परफॉर्मर काम करते हैं। इंडिविजुअल मतलब सिंगल आप रहते हैं, किसी को रिपोर्ट करेंगे और आपका बॉस एक रहेगा। ये ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, हायरार्की होती है। अब 4 से 5 साल के बाद टेंटेटिवली आप डेफिनेटली ग्रो होने वाले हो, यानी कॉर्पोरेट लाइफ में आप ग्रो होगे। तो आपको उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हायरार्की थी, सबसे बेसिक लेवल उसकी नेक्स्ट हायरार्की आएगी, टीम हैंडलिंग।
1: राइट।
0: हो सकता है 2 लोग या 3 लोग आपका टीम हैंडलिंग आएगी, वहां पे आपका एमबीए ही काम आने वाला है। आपका क्या कहना है भाजी?
1: 100% सर, 100%। जैसे हम लोग अभी प्रमोशन की बात करें
0: जी,
1: है ना, तो एमबीए का इम्पैक्ट आपके प्रमोशन पे 100% आता ही है
0: जी।
1: ठीक है, तो जैसे आपने बताया
0: जी,
1: आपके कलीग का यदि डिग्री नहीं है
0: जी,
1: तो देन यू विल बी एट, है ना, बेटर पोजीशन।
0: राइट।
1: दूसरा, मैनेजमेंट या फिर कंपनी इस तरीके से इसको देखती है कि दिस पर्सन हैज एडिशनल स्किल एंड नॉलेज।
0: एग्जैक्टली।
1: एडिशनल स्किल एंड नॉलेज जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट लेवल पे चाहिए।
0: जी।
1: तो ये हम लोग मैनेजमेंट की ही पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इसमें मैनेजमेंट का जो वैल्यू एडिशन होता है वो 100% प्रमोशन के लिए, है ना, कंपनी प्रेफरेंस देता
0: है, प्रेफर करती है। बिल्कुल सही है। तो एक रियल टाइम अगर सिनेरियो भी ले लेते हैं, अगर आपके पास प्रमोट करने के लिए अगर कॉर्पोरेट में जगह आपके बॉस के पास केवल एक ही जगह है और आप अपने किसी एक कलीग है उससे आप कंपीट कर रहे हैं, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, पर अभी बॉस अगर सोचेगा कि अभी किसे प्रमोट करूं मैं, तो जिस कैंडिडेट के पास अगर एमबीए का एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा 100% ही विल गेट द प्रमोशन। उसके पीछे जैसे बाजी सर ने बताया, तो उसमें एक और एडिशन कर दूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट का जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो 2 साल में थोड़ा बहुत वो लेके आया है, तो ही कुड बी अ बेटर पीपल मैनेजर, वो हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट का उसको 2 साल की पढ़ाई करके एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है।
1: अभी एमबीए हमने क्यों करना चाहिए, इसका 5th रीजन है, नेटवर्किंग आपका बेटर होता है।
0: ओके,
1: है ना।
0: ओके जी,
1: जैसे
0: जी,
1: आपके कलीग्स जो है एमबीए कॉलेज होने के बाद दे गेट प्लेस इन बेटर, है ना, कॉर्पोरेट्स। कुछ लोग अच्छी जगह पे प्लेस होते हैं, कुछ लोग, है ना, ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट में प्लेस हो जाते हैं।
0: जी,
1: सो एट ए टाइम यू गेट फीडबैक एंड नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स।
0: राइट। सही का। तो अभी
1: आप बताइए
0: जी, उसमें नेटवर्किंग में देखिए, मैं उसको थोड़ा सा काफी क्लोजली मैं देख चुका हूँ मैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि मैं जैसे विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ, तो कुछ 20 स्कूल्स में जाता हूँ मैं, तो वहां पे लोगों का जो उसे रहता है वहां से मुझे समझ में आता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट जो होती है 20 स्कूल्स में, जो प्लेसमेंट होती है एल्यूमिनी पे काफी करी की बेस्ड होती, जो आपके पहले जो आपके सीनियर थे
1: right.
0: वो कहाँ पे जाके कहाँ जॉब कर रहे हैं।
1: right.
0: और एक बहुत एक इंटरनल फीलिंग भी होती है कि मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है या मेरे कॉलेज का है, अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी तो मैं पहला प्रेफरेंस ऐसा ही होता है कि भाई नॉर्मली होता है कि मैं मेरे कॉलेज का है तो इसे रिलेशन बनता है तो उसको मैं अपॉर्चुनिटी मिलती है,
1: अपॉर्चुनिटी दू
0: कि उसको जॉब मिलेगा।
1: राइट।
0: पहला चीज ये हो जाता है। फर्ज करो अगर आप कहीं छोड़ के चले जाते हैं, कहीं कॉलेज छूटने के बाद आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेते हैं, पर जो आपकी जो क्लासमेट होते हैं, एक बैच में अंदाजन पकड़ के चलिए 100 से 120 लोग होते हैं, और सारे के सारे 120 लोग कॉर्पोरेट में अपना करियर बनाने वाले हैं।
1: राइट।
0: और कहीं ना कहीं जॉब करते रहेंगे।
1: करेक्ट।
0: और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी नेटवर्किंग आपकी पहले से रहती है। आपका क्या कहना है?
1: सही बात है सर। तो वो नेटवर्किंग जो है वो एंटायर करियर में अपने को बेनिफिट देता ही है। एल्यूमनी नेटवर्किंग जिसको हम लोग
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों 5 reasons why to do MBA आज हम लोगों ने इसको टच कर लिया है। आज के लिए इतना ही। हम अगले एपिसोड में हम टच करने वाले हैं where to do MBA। ध्यान में रखिए, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, where to do MBA बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको पूरी तरह से, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच, और मेरे सहयोगी
1: राजन बाजी, आपकी यहीं पे अभी विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान, फिर से हम हाजिर हुए हैं अगली सीरीज लेके, एमबीए द डिफरेंशिएटर। और मेरे साथ हैं
1: राजन बाजी, और मुझे बड़ी खुशी होती है आज हमारे साथ में हमारे नए गेस्ट भी है मिस्टर अंतुरकर सर। और अंतुरकर सर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अंतुरकर सर का 40 इयर्स का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है, प्लस वो एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी काम कर चुके हैं कॉलेजेस में। खुशी की बात यह है कि उन्होंने भी MBA किया है 40 साल पहले जमनालाल बजाज कॉलेज से। तो सर आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद आणि नमस्कार।
0: तो इस सीरीज में आज जो सेकंड एपिसोड है हमारा, आज दोस्तों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, कागज पेन लीजिए, लेके बैठ जाइए आज दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज रेडियो शो में तकरीबन 80 साल का एक्सपीरियंस आज बैठा हुआ है। तो आज नॉलेज मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतना जबरदस्त नॉलेज मिलेगा। तो बाजी सर, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। तो जो सेकंड जो मेन टॉपिक है, वेयर टू डू MBA,
1: राइट,
0: इसमें हम आज चर्चा करेंगे। 8 चेक पॉइंट इसके हैं, right. कि वेयर टू डू MBA। तो हम एक एक पॉइंट को हम चेक करते जाएंगे, और सर के भी ओपिनियन जब रहेंगे तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, सर का आप ओपिनियन उस पे लीजिए जो उनका रिच एक्सपीरियंस है इतना।
1: करेक्ट।
0: तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, वेयर टू डू MBA, नेम ऑफ द कॉलेज या ब्रांड ऑफ द कॉलेज। कोई भी अंडर ग्रेजुएट रहता है सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जब जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अब मैं कौन से कॉलेज में जाऊं। XYZ का कॉलेज का नाम वो देखता है और वो जाता है। अभी उसको मैं कॉर्पोरेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। जैसे मैं हो गया, आप हो गए, जैसे अंतुरकर सर भी हो गए, हम लोगों ने अपने कॉर्पोरेट करियर में बहुत सारी इंटरव्यू लिए, और जब रिज्यूम आता है सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन उसका क्या है। जैसे ही लिखा होता है MBA तो हम ये देखते हैं, या अगर लिखा नहीं होगा तो हम ये पूछते हैं कि आपने MBA कहां से किया हुआ है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि कहां से किया है, मतलब कॉलेज का नाम क्या है,
1: कौन से कॉलेज से,
0: और उसका रेपुटेशन क्या है। ये टोटलिटी में ये बड़ा सब्जेक्ट है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉलेज का नाम क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसकी ब्रांडिंग क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसकी ब्रांडिंग और उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना बहुत जरूरी। आपके क्या ओपिनियन है?
1: 100% सर, कॉलेज का नाम सुन के इमीडिएटली जो है एक कुछ इंप्रेशन बन जाता है सामने
0: जी,
1: वाले
0: जी,
1: का
0: जी,
1: और दैट इज रिलेटेड विद द ब्रांड ऑफ द कॉलेज,
0: राइट राइट।
1: तो वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कॉलेज के नाम के बाद सेकंड पॉइंट है कि रैंकिंग
0: जी।
1: तो रैंकिंग जो है, अभी आज की डेट में आप देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अपना अपना रैंकिंग पब्लिश करते हैं हर साल
0: जी जी,
1: है ना। और उनका एक सर्टन मेथोडोलॉजी है रैंकिंग निकालने का
0: जी जी,
1: है ना। कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर वो हर कॉलेज का टेस्ट लेते हैं या फिर सर्वे करते हैं और उसके ऊपर रैंकिंग तय करते हैं
0: जी जी।
1: तो ये अपने को गूगल भी करेंगे आज की डेट में तो हमें ये रैंकिंग मिल जाता है
0: जी।
1: और एवरी ईयर वो रैंकिंग चेंज होते रहता है
0: जी जी।
1: तो इस साल जो भी स्टूडेंट है ना MBA करने की सोच रहे हैं तो एक बार वो रैंकिंग भी चेक कर लें
0: जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो ये बहुत महत्वपूर्ण है रैंकिंग। अच्छे रैंकिंग वाले कॉलेज से करेंगे तो डेफिनेटली आपके MBA डिग्री की वैल्यू डेफिनेटली अच्छी होगी
0: जी। इसमें मैं एक और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा बाजी सर। इसमें रैंकिंग का है कि दो चीज होता है जो मैंने ऑब्जर्व की है। एक तो जो कॉलेज की वेबसाइट होती है वो खुद उस कॉलेज की वेबसाइट अपने एक रैंकिंग उस पे अपलोड करके रखती है,
1: राइट।
0: तो उसमें चेक करने वाली बात ये होती है कि वो रैंकिंग जो है वो कब की पब्लिश की हुई है।
1: एग्जैक्टली।
0: जैसे आपने बताया कि अपडेटेड रैंकिंग है या नहीं है,
1: करेक्ट।
0: तो आपको अगर अपडेटेड रैंकिंग चाहिए अप टू डेट तो आप गूगल पे जाइए और जो टॉप पब्लिकेशन जैसे आपने नाम बताया उनको चेक कीजिए कि लेटेस्ट जो रैंकिंग है उसको आप चेक करके फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।
1: एग्जैक्टली सर।
0: तो हम अभी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्रेडिशन,
1: राइट।
0: एक्रेडिशन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट से जो अप्रूवल दी गई है, इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल होता है,
1: राइट राइट।
0: तो इसको ध्यान से सुन लें, AICTE करके गवर्नमेंट की संस्था है जो अप्रूव करती है कॉलेज को, वो आपको सीधा चेक करना है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने रिस्क पे जाते हैं, अगर अप्रूव्ड है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपको एक थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्रेडिशन आपको चेक करना ही चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है?
1: 100%। थोड़ा सा इसमें मिससेलिंग होते रहता है
0: जी जी जी।
1: एक्रेडिशन है या नहीं
0: जी,
1: ये चेक करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ मतलब केसेस ऐसे है कि उनका एक्रेडिशन कुछ और यूनिवर्सिटी से होता है
0: जी जी,
1: या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होता है
0: जी जी,
1: जिसका मतलब जो है रिलेवेंसी या फिर ना मार्केट में वैल्यूएशन कम होता है
0: जी।
1: तो एक्रेडिटेशन कहाँ से है, किसके साथ है, AICTE से है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट आई बिलीव।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि क्या होता है आपका सारा करियर पूरा दांव पे लगा होता है। पता चला आप एडमिशन ले लिए, एक साल हो गया और उसके बाद आपको समझ में आता कि ये एक्रेडिटेशन अप्रूव्ड नहीं है AICTE से, तो आपका करियर पूरा दांव पे लग जाता है।
1: करेक्ट है, करेक्ट है। अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं सर
0: जी,
1: है ना, अफोर्डेबिलिटी
0: जी।
1: तो MBA का अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मार्केट में, तो फीस इज वेरिड फ्रॉम राइट फ्रॉम 50,000 टू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी है
0: जी जी,
1: है ना। तो लेकिन हमें कितना अफोर्डेबल है
0: जी,
1: दैट एवरी स्टूडेंट बिफोर टेकिंग द एडमिशन ही शुड डू द इंक्वायरी अबाउट द फीस एंड शुड थिंक इफ इट इज अफोर्डेबल फॉर मी और नॉट।
0: राइट राइट,
1: ठीक है। अभी इसमें एक थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा
0: जी।
1: अभी जैसे एक कैटेगरी के कॉलेज है IIMs, है ना, या फिर जमनालाल बजाज है, SP जैन है
0: जी,
1: तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का बहुत ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि वॉट एवर यू विल इन्वेस्ट विद सच ए कैटेगरी ब्रांड वो आपको रिटर्न इमीडिएट मिल जाता है।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: क्योंकि वहां से प्लेसमेंट बहुत अच्छे जगह पे होता है और आपका जो है इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल हो जाता है।
0: राइट,
1: ठीक है।
0: राइट,
1: A&B कैटेगरी जो कॉलेज है उनके लिए बहुत ज्यादा हम लोग ना भी सोचे अफोर्डेबिलिटी का तो भी चल जाता है
0: जी।
1: लेकिन सी कैटेगरी जैसे, मतलब ये A&B कैटेगरी में कॉलेजेस नहीं है,
0: हाँ,
1: और सी कैटेगरी में है
0: जी,
1: यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट द अफोर्डेबिलिटी
0: जी जी,
1: है ना, क्योंकि ऐसे सी कैटेगरी के बहुत सारे कॉलेजेस वो 15-15 लाख भी फीस लेते हैं
0: है,
1: और 50,000 भी लेते हैं, और दोनों में स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं होता है
0: जी जी जी,
1: है ना। तो व्हाई टू स्पेंड अननेसेसरली एक्स्ट्रा मनी
0: जी जी जी।
1: तो एक अफोर्डेबिलिटी में थोड़ा सा और डिटेल में जाके मैं बताना चाहूंगा, और ABC कैटेगरी क्या है इसके लिए आपको पर्सनली हमें बात करनी होगी, यहाँ पे समय की दिक्कत है
0: जी जी,
1: है ना। तो हम लोग प्रोग्राम के अंत में अपना फोन नंबर बताएंगे, तो फ्री काउंसिलिंग के लिए आप फोन कर सकते हैं, हम लोग आपको डिटेल में ABC कैटेगरी वाले कॉलेज कौन से बता देंगे।
0: उसमें एक ही पॉइंट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा बाजी सर, मैं पर्सनली ऐसे पुणे डिस्ट्रिक्ट, मुंबई में, बाहर भी मैं देखता हूँ जहाँ पे फीसेस जो है 15 लाख 20-20 लाख है।
1: हाँ जी।
0: और एक मानसिकता बच्चे की क्या होती है कि वो पहले कॉलेज देखना चाहता है, जैसी वो कॉलेज देखता है, कैंपस देखता है, तो वो बहुत ही जबरदस्त रहता है, स्वैंकी रहता है, पर जरूरी नहीं है कि पढ़ाई का जो लेवल है वहां से वो बहुत अच्छा हो। हाँ, तो इसमें आपको बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि 12-15 लाख 20 लाख है तो कॉलेज अच्छा होगा, इस गलत फहमी में मत रहिए।
1: Exactly.
0: हाँ, तो आप बच्चों लोग के लिए ये क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ क्वेश्चन है कि बड़ा फीस अच्छा कॉलेज ऐसा बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है।
1: नहीं।
0: जी, तो वही मैं ऐड करना चाहता हूँ।
1: राइट राइट
0: जी।
1: तो ये हमने 4 पॉइंट कवर किए सर, मैं अभी अंतरुकर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा सा 5th एंड 6th वाला जो पॉइंट है प्लेसमेंट एंड करिकुलम, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर जी।
2: एक्चुअली क्या है कि आज आप देखिए तो 89% MBA ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, उनके मार्केट में कोई वैल्यू

0: कभी क्या होता है कि कॉलेज ऐसे ही ठोक देता है कि अच्छा एक गड़बड़ हो जाती है
1: जी जी जी,
0: इसलिए ये भी देखना जरूरी है
1: जी जी जी।
0: अगर कोई कॉलेज के पास कोई प्लेसमेंट नहीं आती है तो बहुत दिक्कत है, ऐसे कॉलेज में जाना बहुत डेंजरस है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है
1: जी सर जी।
0: क्योंकि अगर प्लेसमेंट नहीं होती है इसका मतलब उनका स्टैंडर्ड बहुत नीचे है
1: जी जी।
0: तो ये सब सोच के आप प्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और प्लेसमेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो है प्रोजेक्ट्स। आपने जो दो साल में जो कुछ प्रोजेक्ट बनाए
1: जी सर,
0: वो इंडस्ट्री रिलेटेड है का नहीं है, उसका कुछ मार्केट वैल्यू है का नहीं है,
1: बिल्कुल
0: उसके मुताबिक प्लेसमेंट हो जाती है। तो इसके लिए विद्यार्थियों ने भी सोचना चाहिए कि सचमुच प्रोजेक्ट में अपने हाथों से करूं, अपना दिमाग लड़ा के करूं, और ये प्रोजेक्ट का इंडस्ट्री कुछ फायदा होना चाहिए
1: जी जी। सर मैं बीच में एक थोड़ा छोटा सा डाउट है जो शायद जो यंग है उनको पूछ लेता मैं आपसे, कि सर ने जो एक चेक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने बताया, प्लेसमेंट जो है वेबसाइट में पोस्ट हो गई है, तो सर ने कहा कि उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि सही में वो प्लेसमेंट हुई है कि नहीं हुई है,
2: ये इम्पोर्टेंट है
1: जी जी जी, वर्ड ऑफ कॉशन है ये बच्चों के लिए। एक और मैं सवाल पूछता हूँ, अभी करिकुलम से रिलेटेड है सर, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आप भी एमबीए के हैं, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, आप कॉलेज चुनने में ये करिकुलम का क्या रोल है एक कॉलेज चुनने में, आप थोड़ा उसमें लाइट डालिए सर।
0: एक्चुअली में क्या है, उसमें दो तीन प्रकार है, ये जो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड कॉलेजेस है
1: जी
0: उनका करिकुलम फिक्स है,
1: राइट सर,
0: वो जो करिकुलम है
1: जी,
0: और आईआईएम का करिकुलम
1: जी
0: बहुत सारे कॉलेज में सेम ही है,
1: अच्छा
0: कोई फर्क नहीं है,
1: ओके
0: क्योंकि ऑल दिस आर अप्रूव्ड बाय AICTE,
1: ओके
0: AICTE अप्रूव्ड है इसका मतलब उनका करिकुलम सेम ही है,
1: राइट सर।
0: लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस है जो खुद अपनी डिग्री देते हैं
1: जी सर,
0: तो उनका क्लेम ऐसा रहता है कि हमने इंडस्ट्री से बात करके एक करिकुलम ने मॉडिफिकेशन किया है,
1: राइट सर,
0: और उसके वजह से आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा,
1: राइट सर,
0: ऐसा वो सोचते हैं
1: जी।
0: लेकिन सचमुच ये हुआ क्या नहीं है
1: जी,
0: ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन है ये बहुत डेंजरस है ऐसा मुझे लगता है,
1: अच्छा अच्छा,
0: कि सचमुच इसका असर इंडस्ट्री के ऊपर हो जाएगा या विद्यार्थियों के ऊपर हो जाएगा
1: जी,
0: कि ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर हो जाएगा, इसलिए करिकुलम चेंज करना
1: जी
0: बहुत मुश्किल बात है ऐसा मैं मानता हूँ
1: जी।
0: इसलिए प्राइवेट कॉलेज में जाने के पहले
1: जी
0: एक करिकुलम आप देख लीजिए
1: जी,
0: लेकिन करिकुलम का अल्टीमेट इफेक्ट जो है
1: हाँ
0: जॉब जनरेशन में होता है क्या नहीं है ये देखना बहुत जरूरी
1: ओके,
0: है
1: ओके,
2: उसका रिलेवेंसी चेक करना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सर आपने बताया।
1: मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों के लिए जो यंग है, एक जो है प्लेसमेंट की बताया जो पोस्ट की है उसको आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए अपने तरीके से, दूसरा जो करिकुलम जो आप बता रहे हैं करिकुलम जो इफेक्टिव है कि नहीं कॉर्पोरेट लाइफ में वो भी चेक कीजिए, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अभी नेक्स्ट पॉइंट होता है, सेवेंथ पॉइंट हो रहा है एल्युमिनी नेटवर्क एंड फीडबैक, एल्युमिनी नेटवर्क का फीडबैक, मुझे समझो एक्स वाई जेड कॉलेज पता चल गया है और मोरल लेस समझो मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये यहाँ पे मैं एडमिशन लूंगा, अब मुझे लास्ट चीज होता है कि मैं अभी किसी से बात कर लूं जो ऑलरेडी पढ़ के निकला हुआ है,
2: correct,
1: कि भाई कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसी है, करिकुलम कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है, वो कहना, अब वो पता कैसे चले, तो इसमें आप स्टूडेंट सोचेगा जिसको एडमिशन ले वो सोचेगा मैं कैसे पता करूं, मुझे तो मालूम नहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है,
2: करेक्ट,
1: आप जो भी कॉलेज पे जाएंगे वहां पे उसके एलुमनी के ग्रुप होते हैं, उसमें आप जाके अटैच कीजिए, एक क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, और एक वर्ड ऑफ कॉशन कि कम से कम 4 से 5 लोगों के जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनसे बात कीजिए,
2: राइट,
1: और उनके फीडबैक पे बेस्ड पे अपना डिसीजन आप फिर ले सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, आपकी क्या राय है बाजी सर?
2: एकदम सही बोला सर आपने, नाउ वी आर इनटू द रिवोल्यूशनरी पीरियड,
1: राइट,
2: डिजिटलाइजेशन में हम लोग है
1: जी जी,
2: है ना, तो इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ी बात नहीं है
1: जी जी,
2: इफ समबडी डिसाइड्स आई वांट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ही कैन गेट,
1: राइट राइट,
2: है ना, तो एल्युमिनियम नेटवर्क जो है जैसे फेसबुक में भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं
1: जी,
2: आप कुछ क्वेरी पोस्ट करो तो डेफिनेटली लोग रिप्लाई करते ही है,
1: यस यस यस यस,
2: तो आपने बताया वो सही है, वो एक हो गया एल्युमिनियम नेटवर्क
1: जी,
2: और दूसरी चीज है वहाँ पे आपको फोन नंबर भी मिल जाता है
1: जी जी,
2: है ना, तो यू कैन पुट 1 or 2 फोन्स
1: जी, जी,
2: कुछ
1: जी,
2: 3-4 लोगों से बात कर ले
1: जी,
2: तो डेफिनेटली लोग बोलते हैं
1: जी,
2: है
1: ना, जी, जी,
2: तो वैसे फीडबैक लेंगे
1: जी,
2: तो मुझे लगता है आपको पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा,
1: वेरी क्लियर। इसमें मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिस कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस शो पे, ऐसे नेगेटिव कुछ नहीं है, पर मैं 15 साल बाद उस एलुमनी नेटवर्क से मैं कनेक्ट होना चाहा, तो मुझे केवल आधा घंटा लगा फेसबुक में जाके मैंने पोस्ट किया, कहाँ सर्च किया, गए और ग्रुप में आए और जितने भी क्वेश्चंस मैंने क्वेरीज पोस्ट की जो भी था फटाफट मुझे जवाब मिलने लगा।
2: करेक्ट।
1: तो हम थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के

0: पहले बाजी सर आपकी इजाजत हो तो मैं रैंकिंग मैं जो पॉइंट्स है मैं थोड़ा बता दूं,
1: फिर से रिपीट कर
0: रिपीट कर दूं। पहला पॉइंट है नेम और ब्रांड ऑफ द कॉलेज। इसी सीक्वेंस में देखिएगा दोस्तों जो हमको सुन रहे इसी सीक्वेंस में देखिएगा, नेम और ब्रांड ऑफ द कॉलेज। सेकंड है
1: रैंकिंग।
0: थर्ड आ जाती है एक्रेडिशन, मतलब AICTE से जो एक्रेडिशन है ना अप्रूवल है गवर्नमेंट का वो।
1: राइट। एंड फोर्थ है अफोर्डेबिलिटी।
0: यस। और फिफ्थ आ जाता है प्लेसमेंट्स।
1: एंड देन सिक्स्थ है करिकुलम।
0: और सेवेंथ हो जाता है एलुमनी नेटवर्क एंड फीडबैक।
1: राइट जी। तो ये मेरे ख्याल से 7 चेक पॉइंट है जो बहुत ही मायने रखते हैं किसे कौन सा कॉलेज मुझे कौन से कॉलेज से MBA करना है ये डिसाइड करने के पहले
0: जी।
1: तो ये 7 पॉइंट पे हम लोग थोड़ा क्रॉस चेक कर ले, मुझे लगता है कि सही जवाब हमें मिलेगा।
0: राइट। उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। अब आखिरी पॉइंट आ जाता है लोकेशन। लोकेशन पे अगर मैं कहना चाहूंगा लोकेशन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट।
1: राइट।
0: कॉलेज सही है, सब कुछ सही है, 7 चेक पॉइंट में सब में टिक टिक टिक आ जाता है। तो मेरा है अंडमान निकोबार भी आपको जाना पड़े, समुद्र के बीच में भी जाके पढ़ना पड़े।
1: हाँ जी।
0: तो आप जाके पढ़िएगा। अतुल सर आपका क्या ओपिनियन है लोकेशन?
2: लोकेशन आप जैसे सोचते हो बाकी सब पॉइंट ठीक है, लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ
0: जी सर,
2: लोकेशन बिल्कुल ऐसी जगह में हो जहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता जहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल है
0: जी,
2: वहाँ जाना भी ज़रा रिस्की है।
1: रिस्की
0: जी।
1: ऐसे नॉर्मली अच्छे जैसे मतलब 7 पॉइंट में कोई यदि टिक मिलता है है ना, ये सेंसर मिलता है जैसे रैंकिंग हो, नेम हो, एक्रेडिशन हो, तो मुझे नहीं लगता उसका लोकेशन ऐसे लोकेशन पे होगा। आपने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी कैटेगरी के जो कॉलेजेस है जो ऐसे लोकेशन पे है जैसे अंतुरकर सर ने बताया, तो डेफिनेटली आप सोचो करना है नहीं करना है वहाँ पे।
0: तो दोस्तों आज की सीरीज के लिए आज इतना ही। मैं अभय चौहान और मेरे साथ हैं राजेंद्र बाजी सर और अंतु सर, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप क्लोजिंग कुछ बोल सकते हैं एक मिनट?
2: पहला आप सोचिए कि मुझे MBA करके सचमुच क्या हासिल करने का है।
0: जी जी जी।
2: सचमुच आपको सिर्फ मैनेजर बनने का है कि सचमुच अपने हाथ से कुछ काम करने का है?
0: जी जी सर।
2: अगर आप काम करने को तैयार नहीं है तो MBA होने कोई जरूरत
0: जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू अंतुरकर सर। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण इसके पूरे डिटेल में अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं और आपकी क्वेरी हम आपका जवाब देंगे। व्हाट्सएप का नंबर है नोट कीजिए 7798460460। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ 7798460460। थैंक यू वेरी मच अभय चौहान की तरफ से।
1: थैंक यू वेरी मच राजन बाजी।
2: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू।

0: श्रोते हो, हसी का हंगामा कहकहों का खजाना ज्याला आपण म्हणतो तो म्हणजे हास्य तरंग.
1: एक था गरीब सब्जी वाला आणि एक थी परी महिलों की सब्जी वाला. महिलों की परी नवंबर की ठंडी में जब वो गई मंडी में सब्जी वाले का उड़ गया होश. नरम नरम लाइफ में गरम गरम जो
0: कार्यक्रमात आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहोत.
2: Hey, hey, hey.

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच, और मेरे साथ बैठे मेरे सहयोगी
1: राजन बाजी, मैं आपके साथ हूं अभी इस प्रोग्राम में।
0: दोस्तों, इस बार हम फिर से एक नया सीरीज हम लेके आए हैं और उस प्रोग्राम का टाइटल है MBA द डिफरेंशिएटर। और 96% ऑफ द एम्प्लॉयर सेड हायरिंग MBA क्रिएट वैल्यू फॉर देयर कंपनीज। तो हम इस सीरीज में अभी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। आज की डेट में बहुत हॉट टॉपिक है कि मुझे MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा बाजी सर, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए जो हमें पहली बार सुन रहे होंगे रेडियो पे।
1: सर, मेरा इंट्रोडक्शन फिर एक बार मैं देता हूँ। मेरा MBA हुआ है और एडिशनली मेरा इंजीनियरिंग का डिग्री है, और मेरा 25 साल का BA कॉर्पोरेट लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड आई एम हेडिंग अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इन अ प्राइवेट कंपनी राइट नाउ।
0: जो सुनने वाले उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दो तीन शब्दों में। मेरा भी कॉर्पोरेट में जो एक्सपीरियंस है, 18 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, और मैं 3 साल एंटरप्रेनर भी रह चुका हूँ, और अभी मैं ऐसे फ्रीलांसर में जाके कॉर्पोरेट्स में और बी स्कूल्स में वर्कशॉप्स लेता हूँ, और उसके अलावा मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी काम करता हूँ। अब सबसे पहले आता है कि रीजन टू स्टार्ट दिस सीरीज MBA द डिफरेंशिएटर, ये बाजी सर और मैंने ये क्यों सोचा और इस चीज को क्यों हम सोचे, उस बारे में हम थोड़ा सा एक जो हम सुन रहे हैं, हमारे श्रोता हैं, दोस्त हैं, वो सुन ले, ध्यान से सुन ले कि उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये होता है कि जैसे कोई भी बी करे चाहे बी कॉम करे, यानी किसी भी स्ट्रीम में कोई ग्रेजुएशन करता है, तो दो चीज दिमाग में आने लगती है उस स्टूडेंट के दिमाग में बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: पहला वो सोचता है कि आगे में कोई फर्दर एजुकेशन में करूं या नहीं करूं, या सीधा दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं कहीं जॉब में ले लूं। आपका क्या विचार है इसमें?
1: राइट। अभी सर, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा तो ये अनुभव रहा है कि अभी आज के जो स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन के बाद डेफिनेटली हायर एजुकेशन का सोचते ही है और करते ही है
0: जी,
1: क्योंकि वो आज के वक्त की डिमांड है।
0: जी जी,
1: इट्स अ क्वाइट कॉमन फिनोमेना एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी ग्रेजुएशन के बाद क्या करें।
0: राइट। तो उसमें एक दो सेंटेंस में और बोल देता हूँ कि दोस्तों जो हमको सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। आप अगर इस दुविधा में फंसे हैं, अगर आप सोच रहे हो कि क्या करना है मुझे, जॉब करूं या आगे की मैं पढ़ाई करूं, अगर मुझे पढ़ाई करना है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे MBA करना चाहिए, मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए, तो उस दुविधा को इस सीरीज में हम पूरी तरह से आपका सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। जी बाजी सर, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से?
1: 100% सर, 100%
0: जी। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अभी सबसे पहला एक टॉपिक है जिसको हम आगे लेके बढ़ेंगे, व्हाई टू डू MBA। इसके 5 रीजंस हैं, और इस 5 रीजंस को मैं और बाजी सर आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिसनर हैं उस चीज को पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस करेंगे, व्हाई टू डू MBA 5 रीजंस।
1: राइट बाजी सर? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली
0: जी।
1: इसमें मैं चालू करता हूं सर
0: जी।
1: पहला मतलब इज वेरी कॉमन क्वेश्चन कि प्रोफेशनल और स्पेशलाइज डिग्री ये जो हम लोग ले रहे
0: जी,
1: तो इसका क्या इम्पैक्ट है और क्या बेनिफिट है?
0: राइट।
1: तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ सर
0: जी। जी,
1: जैसे आप देख रहे हैं Now time has changed drastically, है ना? The entire industry is very dynamic now.
0: Right.
1: As compared to 20 years back.
0: जी।
1: और आज का हम लोग यदि देखे
0: जी,
1: और दोनों का थोड़ा सा comparison करते हैं, तो आज का समय काफी बदल चुका है।
0: जी जी जी।
1: पहले जैसा अभी नहीं रहा है, बहुत सारी चीजें नहीं रही है, और टाइम हैज बिकम वेरी फास्ट।
0: राइट
1: एंड हर चीज फास्ट हो गई है
0: जी,
1: एंड कंपनी आल्सो हैव टू यू नो डिलीवर द रिजल्ट वेरी फास्ट।
0: एग्जैक्टली।
1: तो इसका इंपैक्ट अभी एम्प्लॉय पे क्या आया है
0: जी,
1: है ना? तो एम्प्लॉय हैज टू डिलीवर रिजल्ट वेरी फास्ट।
0: करेक्ट सही कह रहे हैं।
1: तो अभी हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। अभी अपने जो श्रोता है वो जो नए मतलब फ्रेश ग्रेजुएट होके है ना, दे आर प्लानिंग देयर करियर
0: जी जी,
1: है ना, और वो सोच रहे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए
0: जी,
1: है ना
0: जी।
1: तो MBA इसलिए भी करना चाहिए कि दिस प्रोफेशनल डिग्री एड्स वैल्यू, आपके नॉलेज में वो एक वैल्यू एडिशन करता है
0: जी, जी।
1: और कंपनी या फिर कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखे
0: जी,
1: तो कंपनी लुक एट द थिंग्स लाइक यू नो इफ समबडी हैज टू डिलीवर द रिजल्ट फास्ट, ही नीड टू हैव सम बैकग्राउंड, सम प्री नॉलेज।
0: राइट।
1: तो MBA जो है इट गिव्स वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज।
0: राइट।
1: जैसे कोई फाइनेंस करता है MBA फाइनेंस, तो इट गिव्स द स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द फाइनेंस।
0: करेक्ट।
1: फाइनेंशियल मैनेजमेंट
0: जी।
1: कोई MBA मार्केटिंग करता है तो इट गिव्स वेरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग।
0: एब्सोल्युटली राइट।
1: लाइक दैट।
0: तो
1: ये एंड इफ समबडी हैज सम प्री नॉलेज, वो फास्ट ग्राफ करता है और रिजल्ट भी डिलीवरी फास्ट करता है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: एज कम्पेयर टू ओनली ग्रेजुएट।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बाजी सर ने बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज को टच किया हुआ है। प्रोफेशनल डिग्री है ये, स्पेशलाइज डिग्री है और स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड डिग्री है जिसकी आपकी नॉलेज बढ़ती है। बाजी सर सही कहा,
1: सही एकदम 100% सही।
0: अब दूसरा पॉइंट जो है मैं टच करता हूँ उसमें है, दूसरा पॉइंट होता है हाई एम्प्लॉयमेंट रेट। हाई एम्प्लॉयमेंट रेट मतलब ये होता है कि अगर आप एमबीए करते हैं, मैं एक सिनेरियो ले लेता हूँ, है ना, जैसे बाजी सर और मैंने, मेरा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि मैं 18 साल कॉर्पोरेट में किया, उसके बाद हजारों लोगों को रिक्रूट भी किया, इंटरव्यू भी लिए। अब उस चीज पे आते हैं कि हाई एम्प्लॉयमेंट रेट होती क्या है। अगर मुझे बंदा कोई अगर मुझे चाहिए रिक्रूट करना है, उनका ग्रेजुएशन लेवल अगर एक ही है, दोनों ने एक ही ग्रेजुएशन किया है, लेट से फॉर एग्जाम्पल बीई किया हुआ है, और दोनों के मार्क्स जो एकेडमिक्स भी परसेंटेज वाइज भी सेम है, अब लें किसको, ये बड़ी दुविधा हो जाती। इंटरव्यू भी दोनों का अच्छा गया है, दोनों पैरेलल है, अभी मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, पर उसमें से अगर एक कैंडिडेट, उसमें से अगर उसके पास में अगर एमबीए की अगर उसकी डिग्री अगर एडिशनल होगी तो ही स्कोर्स और शी स्कोर्स द पॉइंट।
1: राइट राइट।
0: तो हाई एम्प्लॉयमेंट रेट में तो है कि जो आपकी एंट्री लेवल होती है, जो जिसे कहेंगे शॉर्टलिस्टिंग ऑफ रिज्यूम हो जाता है या पहला जॉब हो जाता है, उसमें आपकी बहुत जबरदस्त मदद करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप केवल बी करके जा रहे हैं जॉब के लिए, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा, पर साथ में अगर आपका एमबीए भी है तो आपकी जो परसेंटेज है बहुत हाई परसेंटेज बढ़ जाते हैं कि आपका शॉर्टलिस्ट होगा और आप अपॉइंट किए जाओगे।
1: इसमें मैं एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं सर।
0: जी,
1: एक 20 साल पहले द पीपल हु वेर ऑप्टिंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन,
0: करेक्ट
1: है ना, तो 20% के आसपास है ना, एंटायर कैटेगरी में 20% लोग है ना पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे।
0: जी जी,
1: स्पेशलाइज डिग्री में जाते
0: जी,
1: थे।
0: जी जी,
1: 10 साल पहले वही रेट था अराउंड 40%।
0: एग्जैक्टली।
1: और आज के दौर में वो रेट है मोर देन 60-65%।
0: एग्जैक्टली।
1: तो 60-65% लोग आज की डेट में हायर एजुकेशन, स्पेशलाइज एजुकेशन लेते ही है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो इफ यू आर नॉट इन 60-65%, इफ यू आर इन 45%, डेफिनेटली इट रिड्यूसेस योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड इन नटशेल ये होता है कि अगर आप एमबीए करते हैं तो आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी ध्यान में रखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा परसेंटेज से बढ़ जाती है।
1: करेक्ट।
0: जी जी। तो नेक्स्ट हम पॉइंट पे जाते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी
0: जी। तीसरा पॉइंट आता है लर्निंग इन प्रैक्टिस। अब इसमें दोस्तों हम इस बात को शेयर करेंगे, हम बहुत अच्छे से इसलिए शेयर कर सकते हैं कि जैसे बाजी सर ने बताया एमबीए है, मैंने भी एमबीए किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद। अब उसमें सीखने को क्या मिलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, खासकर एमबीए में।
1: राइट राइट।
0: ग्रेजुएशन होता है जो 90% जो भी ग्रेजुएशन एकेडमिक कोर्सेस हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल है।
1: राइट।
0: आप इत्तेफाक रखते हैं भाजी?
1: 100%
0: प्योरली थ्योरेटिकल है। अब एमबीए में ऐसा होता है कि उसमें जो है आपको प्रैक्टिस किया जाता है, जो सिनेरियो दिए जाते हैं, रियल सिनेरियो दिए जाते हैं, ऑन जॉब आपकी प्रैक्टिस होती है और आपकी स्किल्स जो है डेवलप होती है।
1: राइट राइट।
0: अब जो सुन रहे वो सोच रहे होंगे कि कैसे, अभी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप ले लेंगे, फॉर एन एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, आईएम्स जो होते हैं कॉलेज जो एमबीए कराते हैं, वो एक साल में कम से कम 400-425 आपको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देते हैं एक साल में, एक एकेडमिक ईयर में।
1: Right.
0: और उससे नीचे वाले 20 स्कूल्स में आप अगर आएंगे तो 200-250 प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स आपको पर ईयर होती है।
1: राइट right.
0: तो उसमें जो सीखने मिलता है, मतलब लर्निंग मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस right. कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इस वाइस वर्सा। आपका right. क्या विचार है बाजी सर?
1: एमबीए पर्टिकुलरली हम लोग बात करें सर, तो एमबीए में एक रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला स्किल आपको मिलता है।
0: एब्सोल्युटली।
1: एक रियल प्रॉब्लम पे या फिर रियल केस स्टडी पे आपको
0: Correct.
1: है ना स्टडी करने के लिए मिलता है।
0: राइट राइट।
1: एंड व्हिच इज रिलेवेंट विद द करंट सिनेरियो एज वेल एट करंट बिजनेस कंडीशंस।
0: जी जी।
1: सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट व्हेन वी यू गेट इनटू द यू नो मार्केट, व्हेन यू गेट इनटू द एक्चुअल जॉब, तो ये आपका करंट सिनेरियो वाला नॉलेज बहुत फायदेमंद या फिर यूजफुल साबित होता है।
0: जी जी। और उसमें एक और ऐड करना चाहेंगे कि कॉर्पोरेट को ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए जिन को रिलेवेंट सिनेरियो का एक्सपीरियंस है और उसको थोड़ा बहुत हैंडल कर चुके हैं।
1: Exactly.
0: जो आपको एमबीए करने से ही आपको मिलता है।
1: 100%।
0: जी। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: तो चौथा पॉइंट है, फर्ज करो कि सिनेरियो कि आप जॉब कर रहे हैं कहीं और ज्वाइन कर लिया, आपका पहला ही जॉब है।
1: राइट राइट।
0: तो उसमें चौथा पॉइंट आता है प्रिफर्ड फॉर प्रमोशन। प्रिफर्ड फॉर प्रमोशन अभी हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि हम दोनों ने कॉर्पोरेट में अगर दोनों का एक्सपीरियंस जोड़ लेंगे तो 40 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: राइट राइट राइट।
0: शुरुआत के 4 से 5 साल जो आपका कॉर्पोरेट का लाइफ होता है, आप ऐसे इंडिविजुअल परफॉर्मर काम करते हैं। इंडिविजुअल मतलब सिंगल आप रहते हैं, किसी को रिपोर्ट करेंगे और आपका बॉस एक रहेगा। ये ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है, हायरार्की होती है। अब 4 से 5 साल के बाद टेंटेटिवली आप डेफिनेटली ग्रो होने वाले हो, यानी कॉर्पोरेट लाइफ में आप ग्रो होगे। तो आपको उसके बाद नेक्स्ट आता है जो हायरार्की थी, सबसे बेसिक लेवल उसकी नेक्स्ट हायरार्की आएगी, टीम हैंडलिंग। हो सकता है 2 लोग या 3 लोग आपको टीम हैंडलिंग आएगी, वहां पे आपका एमबीए ही काम आने वाला है। आपका क्या कहना है भाई?
1: 100% सर, 100%। जैसे हम लोग अभी प्रमोशन की बात करें
0: जी,
1: है ना, तो एमबीए का इम्पैक्ट आपके प्रमोशन पे 100% आता ही है
0: जी।
1: ठीक है, तो जैसे आपने बताया
0: जी,
1: आपके कलीग का यदि डिग्री नहीं है
0: जी,
1: तो देन यू विल बी एट बेटर पोजिशन।
0: राइट राइट।
1: दूसरा, मैनेजमेंट या फिर कंपनी इस तरीके से इसको देखती है कि दिस पर्सन हैज एडिशनल स्किल एंड नॉलेज।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
1: एडिशनल स्किल एंड नॉलेज जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट लेवल पे चाहिए।
0: जी जी जी।
1: तो ये हम लोग मैनेजमेंट की ही पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इसमें मैनेजमेंट का जो वैल्यू एडिशन होता है वो 100% प्रमोशन के लिए है ना कंपनी प्रेफरेंस देता
0: प्रेफर करती है। बिल्कुल सही है। तो एक रियल टाइम अगर सिनेरियो भी ले लेते हैं, अगर आपके पास प्रमोट करने के लिए अगर कॉर्पोरेट में जगह आपके बॉस के पास केवल एक ही जगह है और आप अपने किसी एक कलीग है उससे आप कंपीट कर रहे हैं, दोनों का परफॉर्मेंस सेम है,
1: सेम है,
0: पर अभी बॉस अगर सोचेगा कि अभी किसे प्रमोट करूं मैं, तो जिस कैंडिडेट के पास अगर एमबीए का एडिशनल क्वालिफिकेशन होगा 100% ही विल गेट द प्रमोशन। उसके पीछे जैसे बाजी सर ने बताया, तो उसमें एक और एडिशन कर दूंगा, क्योंकि मैनेजमेंट का जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो 2 साल में थोड़ा बहुत वो लेके आया है, तो ही कुड बी अ बेटर पीपल मैनेजर वो हो सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट का उसको 2 साल की पढ़ाई करके एक्सपीरियंस लेके आया हुआ है।
1: अभी एमबीए हमने क्यों करना चाहिए, इसका 5th रीजन है नेटवर्किंग आपका बेटर होता है।
0: ओके,
1: है ना।
0: ओके जी,
1: जैसे
0: जी,
1: आपके कलीग्स जो है एमबीए कॉलेज होने के बाद दे गेट प्लेस इन बेटर है ना कॉर्पोरेट्स। कुछ लोग अच्छी जगह पे प्लेस होते हैं, कुछ लोग है ना ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट में प्लेस हो जाते हैं
0: जी।
1: सो एट ए टाइम यू गेट फीडबैक एंड नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स।
0: राइट राइट राइट राइट राइट। सही सही का।
1: तो अभी आप बताइए
0: जी, उसमें नेटवर्किंग में देखिए, मैं उसको थोड़ा सा काफी क्लोजली मैं देख चुका हूं मैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि मैं जैसे विजिटिंग फैकल्टी जाता हूं, तो कुछ 20 स्कूल्स में जाता हूं मैं, तो वहां पे लोगों का जो उसे रहता है वहां से मुझे समझ में आता है। मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट जो होती है 20 स्कूल्स में जो प्लेसमेंट होती है, एल्यूमिनी पे काफी करी की बेस्ड होती है, जो आपके पहले जो आपके सीनियर थे
1: right.
0: वो कहाँ पे जाके कहाँ जॉब कर रहे हैं।
1: राइट।
0: और एक बहुत एक इंटरनल फीलिंग भी होती है कि मेरे कॉलेज का स्टूडेंट है या मेरे कॉलेज का है, अगर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी तो मैं पहला प्रेफरेंस ऐसा ही होता है कि भाई नॉर्मली होता है कि मैं मेरे कॉलेज का है तो इसे रिलेशन बनता है तो उसको मैं अपॉर्चुनिटी मिलती है
1: अपॉर्चुनिटी दूं
0: कि उसको जॉब मिलेगा।
1: राइट।
0: पहला चीज ये हो जाता है। फर्ज करो अगर आप कहीं छोड़ के चले जाते हैं, कहीं कॉलेज छूटने के बाद आप कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेते हैं, पर जो आपकी जो क्लासमेट होते हैं, एक बैच में अंदाजन पकड़ के चलिए 100 से 120 लोग होते हैं, और सारे के सारे 120 लोग कॉर्पोरेट में अपना करियर बनाने वाले हैं।
1: राइट।
0: और कहीं ना कहीं जॉब करते रहेंगे।
1: करेक्ट।
0: और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं तो फिर आपकी नेटवर्किंग आपकी पहले से रहती है। आपका क्या कहना है?
1: सही बात है सर। तो वो नेटवर्किंग जो है वो एंटायर करियर में अपने को बेनिफिट देता ही है। एल्यूमनी नेटवर्किंग जिसको हम लोग
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों 5 reasons why to do MBA आज हम लोगों ने इसको टच कर लिया है। आज के लिए इतना ही। हम अगले एपिसोड में हम टच करने वाले हैं where to do MBA। ध्यान में रखिए, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, where to do MBA बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम आपको पूरी तरह से, मैं अभय चौहान मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप कोच और मेरे सहयोगी
1: राजन बाजी, आपकी यहीं पे अभी विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।
0: थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अभय चौहान फिर से हम हाजिर हुए हैं अगली सीरीज लेके, एमबीए द डिफरेंशिएटर। और मेरे साथ हैं
1: राजन बाजी, और मुझे बड़ी खुशी होती है आज हमारे साथ में हमारे नए गेस्ट भी है मिस्टर अंतुरकर सर। और अंतुरकर सर का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अंतुरकर सर का 40 इयर्स का कॉरपोरेट एक्सपीरियंस है, प्लस वो एज ए विजिटिंग फैकल्टी भी काम कर चुके हैं कॉलेजेस में। खुशी की बात यह है कि उन्होंने भी MBA किया है 40 साल पहले जमनालाल बजाज कॉलेज से। तो सर आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद आनी, नमस्कार।
0: तो इस सीरीज में आज जो सेकंड एपिसोड है हमारा, आज दोस्तों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, सिंसियर रिक्वेस्ट है। जो भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, कागज पेन लीजिए, लेके बैठ जाइए आज दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज रेडियो शो में तकरीबन 80 साल का एक्सपीरियंस आज बैठा हुआ है, तो आज नॉलेज मिलेगा वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, इतना जबरदस्त नॉलेज मिलेगा। तो बाजी सर, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। तो जो सेकंड जो मेन टॉपिक है, वेयर टू डू MBA,
1: राइट,
0: इसमें हम आज चर्चा करेंगे। 8 चेक पॉइंट इसके हैं, right. कि वेयर टू डू MBA। तो हम एक एक पॉइंट को हम चेक करते जाएंगे, और सर के भी ओपिनियन जब रहेंगे तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा, सर का आप ओपिनियन उस पे लीजिए जो उनका रिच एक्सपीरियंस है इतना।
1: करेक्ट।
0: तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, वेयर टू डू MBA, नेम ऑफ द कॉलेज या ब्रांड ऑफ द कॉलेज। कोई भी अंडर ग्रेजुएट रहता है सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में जब जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि अब मैं कौन से कॉलेज में जाऊं। XYZ का कॉलेज का नाम वो देखता है और वो जाता है। अभी उसको मैं कॉर्पोरेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं कनेक्ट करना चाहूंगा। जैसे मैं हो गया, आप हो गए, जैसे अंतुरकर सर भी हो गए, हम लोगों ने अपने कॉर्पोरेट करियर में बहुत सारी इंटरव्यू लिए, और जब रिज्यूम आता है सबसे पहले हम देखते हैं कि एजुकेशन उसका क्या है। जैसे ही लिखा होता है MBA तो हम ये देखते हैं, या अगर लिखा नहीं होगा तो हम ये पूछते हैं कि आपने MBA कहाँ से किया हुआ है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि कहाँ से किया है, मतलब कॉलेज का नाम क्या है,
1: कौन से कॉलेज से,
0: और उसका रेपुटेशन क्या है। ये टोटालिटी में ये बड़ा सब्जेक्ट है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉलेज का नाम क्या है, उसका रेपुटेशन क्या है, उसकी ब्रांडिंग क्या है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, उसकी ब्रांडिंग और उसकी वैल्यूएशन क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट ये चेक करना बहुत जरूरी। आपके क्या ओपिनियन है बाजी?
1: 100% सर, कॉलेज का नाम सुन के इमीडिएटली जो है एक कुछ इंप्रेशन बन जाता है सामने
0: जी,
1: वाले
0: जी,
1: का
0: जी,
1: और दैट इज रिलेटेड विद द ब्रांड ऑफ द कॉलेज,
0: राइट राइट।
1: तो
0: right.
1: वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कॉलेज के नाम के बाद सेकंड पॉइंट है कि रैंकिंग
0: जी।
1: तो रैंकिंग जो है, अभी आज की डेट में आप देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अपना अपना रैंकिंग पब्लिश करते हैं हर साल
0: जी जी,
1: है ना। और उनका एक सर्टन मेथोडोलॉजी है रैंकिंग निकालने का
0: जी जी,
1: है ना। कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर वो हर कॉलेज का टेस्ट लेते हैं या फिर सर्वे करते हैं और उसके ऊपर रैंकिंग तय करते हैं
0: जी जी।
1: तो ये अपने को गूगल भी करेंगे आज की डेट में तो हमें ये रैंकिंग मिल जाता है
0: जी।
1: और एवरी ईयर वो रैंकिंग चेंज होते रहता है
0: जी जी।
1: तो इस साल जो भी स्टूडेंट है ना MBA करने की सोच रहे हैं तो एक बार वो रैंकिंग भी चेक कर लें
0: जी जी। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो ये बहुत महत्वपूर्ण है रैंकिंग। अच्छे रैंकिंग वाले कॉलेज से करेंगे तो डेफिनेटली आपके MBA डिग्री की वैल्यू डेफिनेटली अच्छी होगी
0: जी। इसमें मैं एक और थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा बाजी सर। इसमें रैंकिंग का है कि दो चीज होता है जो मैंने ऑब्जर्व की है। एक तो जो कॉलेज की वेबसाइट होती है वो खुद उस कॉलेज की वेबसाइट अपने एक रैंकिंग उस पे अपलोड करके रखती है,
1: राइट।
0: तो उसमें चेक करने वाली बात ये होती है कि वो रैंकिंग जो है वो कब की पब्लिश की हुई है।
1: Exactly.
0: जैसे आपने बताया कि अपडेटेड रैंकिंग है या नहीं है,
1: करेक्ट।
0: तो आपको अगर अपडेटेड रैंकिंग चाहिए अप टू डेट तो आप गूगल पे जाइए और जो टॉप पब्लिकेशन जैसे आपने नाम बताया उनको चेक कीजिए कि लेटेस्ट जो रैंकिंग है उसको आप चेक करके फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।
1: एग्जैक्टली सर।
0: तो हम अभी तीसरे पॉइंट पे चलते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्रेडिशन,
1: राइट।
0: एक्रेडिशन का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट से जो अप्रूवल दी गई है, इंस्टीट्यूशन को अप्रूवल होता है,
1: राइट राइट।
0: तो इसको ध्यान से सुन लें, AICTE करके गवर्नमेंट की संस्था है जो अप्रूव करती है कॉलेज को, वो आपको सीधा चेक करना है कि वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपने रिस्क पे जाते हैं, अगर अप्रूव्ड है तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो आपको एक थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्रेडिशन आपको चेक करना ही चाहिए। आपकी क्या ओपिनियन है?
1: 100% थोड़ा सा इसमें मिससेलिंग होते रहता है
0: जी
1: है
0: जी जी।
1: एक्रेडिशन है या नहीं
0: जी,
1: ये चेक करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ मतलब केसेस ऐसे है कि उनका एक्रेडिशन कुछ और यूनिवर्सिटी से होता है
0: जी जी,
1: या फॉरेन यूनिवर्सिटी से होता है
0: जी जी,
1: जिसका मतलब जो है रिलेवेंसी या फिर है ना मार्केट में वैल्यूएशन कम होता है
0: जी।
1: तो एक्रेडिटेशन कहां से है, किसके साथ है, AICTE से है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट आई बिलीव।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि क्या होता है आपका सारा करियर पूरा दांव पे लगा होता है। पता चला आप एडमिशन ले लिए, एक साल हो गया और उसके बाद आपको समझ में आता कि ये एक्रेडिटेशन अप्रूव नहीं है AICTE से, तो आपका करियर पूरा दांव पे लग जाता है।
1: करेक्ट है, करेक्ट है। अभी हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं सर
0: जी,
1: है ना, अफोर्डेबिलिटी
0: जी।
1: तो MBA का अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मार्केट में, तो फीस इज वेरिड फ्रॉम राइट फ्रॉम 50,000 टू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी है
0: जी जी,
1: है ना। तो लेकिन हमें कितना अफोर्डेबल है
0: जी,
1: दैट एवरी स्टूडेंट बिफोर टेकिंग द एडमिशन ही शुड डू द इंक्वायरी अबाउट द फीस एंड शुड थिंक इफ इट इज अफोर्डेबल फॉर मी और नॉट।
0: राइट राइट,
1: ठीक है। अभी इसमें एक थोड़ा सा डिटेल में मैं जाऊंगा
0: जी।
1: अभी जैसे एक कैटेगरी के कॉलेज है IIMs, है ना, या फिर जैसे जमनालाल बजाज है, SP जैन है
0: जी,
1: तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का बहुत ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि वॉट एवर यू विल इन्वेस्ट विद सच ए कैटेगरी ब्रांड वो आपको रिटर्न इमीडिएट मिल जाता है।
0: करेक्ट करेक्ट,
1: क्योंकि वहां से प्लेसमेंट बहुत अच्छे जगह पे होता है और आपका जो है इन्वेस्टमेंट वर्थ वाइल हो जाता है।
0: राइट,
1: ठीक है।
0: राइट,
1: A&B कैटेगरी जो कॉलेज है उनके लिए बहुत ज्यादा हम लोग ना भी सोचे अफोर्डेबिलिटी का तो भी चल जाता है
0: जी।
1: लेकिन सी कैटेगरी, जैसे मतलब ये A&B कैटेगरी में कॉलेजेस नहीं है,
0: हाँ,
1: और सी कैटेगरी में है
0: जी,
1: यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट द अफोर्डेबिलिटी
0: जी जी,
1: है ना, क्योंकि ऐसे सी कैटेगरी के बहुत सारे कॉलेजेस वो 15-15 लाख भी फीस लेते हैं,
0: है, है,
1: और 50,000 भी लेते हैं, और दोनों में स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं होता है
0: जी जी जी,
1: है ना। तो व्हाई टू स्पेंड अननेसेसरली एक्स्ट्रा मनी
0: जी जी जी।
1: तो ये एक अफोर्डेबिलिटी में थोड़ा सा और डिटेल में जाके मैं बताना चाहूंगा, और ABC कैटेगरी क्या है इसके लिए आपको पर्सनली हमें बात करनी होगी, यहाँ पे समय की दिक्कत है
0: जी जी,
1: तो हम लोग प्रोग्राम के में अपना फोन नंबर बताएंगे,
0: हाँ,
1: तो फ्री काउंसलिंग के लिए आप फोन कर सकते हैं, हम लोग आपको डिटेल में ABC कैटेगरी वाले कॉलेज कौन से
0: जी
1: बता देंगे।
0: उसमें एक ही पॉइंट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा बाजी सर, मैं पर्सनली ऐसे पुणे डिस्ट्रिक्ट, मुंबई में, बाहर भी मैं देखता हूँ जहाँ पे फीसेस जो है 15 लाख 20-20 लाख है।
1: हाँ जी।
0: और एक मानसिकता बच्चे की क्या होती है कि वो पहले कॉलेज देखना चाहता है, जैसी वो कॉलेज देखता है, कैंपस देखता है, तो वो बहुत ही जबरदस्त रहता है, स्वयं की रहता है, पर जरूरी नहीं है कि पढ़ाई का जो लेवल है वहां से वो बहुत अच्छा हो। हाँ, तो इसमें आपको बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि 12-15 लाख 20 लाख है तो कॉलेज अच्छा होगा, इस गलत फहमी में मत रहिए।
1: Exactly.
0: हाँ, तो आप बच्चों लोग के लिए ये क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ क्वेश्चन है कि बड़ा फीस अच्छा कॉलेज ऐसा बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है।
1: नहीं।
0: जी, तो वही मैं ऐड करना चाहता हूँ।
1: राइट राइट
0: जी।
1: तो ये हमने 4 पॉइंट कवर किए सर, मैं अभी अंतरुकर सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो थोड़ा सा 5th एंड 6th वाला जो पॉइंट है प्लेसमेंट एंड करिकुलम, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर जी।
2: एक्चुअली क्या है कि आज आप देखिए तो 89% MBA ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, उनके मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि उनके कुछ सिखाया नहीं गया है, वो कुछ सीखे नहीं है
0: जी जी,
2: ये बहुत दिक्कत है
0: जी,
2: उसकी वजह से प्लेसमेंट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
0: राइट सर।
2: जब आप कॉलेज चुनते हो तो उस टाइम वो कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर कहाँ कहाँ उन्होंने प्लेसमेंट दिया है,
0: राइट सर,
2: वो आपको मालूम पड़ेगा।
0: राइट सर।
2: और वो कंपनी से आप इंक्वायरी कर सकते हो कि सचमुच है क्या नहीं है।
0: राइट राइट राइट राइट।
2: क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज ऐसे ही ठोक देता है कि
0: अच्छा,
2: ये गड़बड़ हो जाती है
0: जी जी जी,
2: इसलिए ये भी देखना जरूरी है
0: जी जी जी।
2: अगर कोई कॉलेज के पास कोई प्लेसमेंट नहीं आती है तो बहुत दिक्कत है, ऐसे कॉलेज में जाना बहुत डेंजरस है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है
0: जी सर जी।
2: क्योंकि अगर प्लेसमेंट नहीं होती है इसका मतलब उनका स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे है
0: जी जी,
2: तो ये सब सोच के आप प्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और प्लेसमेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहता है वो है प्रोजेक्ट्स, आपने जो 2 साल में जो कुछ प्रोजेक्ट बनाए
0: जी सर,
2: वो इंडस्ट्री रिलेटेड है का नहीं है, उसका कुछ मार्केट वैल्यू है का नहीं है,
0: बिल्कुल
2: उसके मुताबिक प्लेसमेंट हो जाती है। तो इसके लिए विद्यार्थियों ने भी सोचना चाहिए कि सचमुच प्रोजेक्ट में अपने हाथों से करूं, अपना दिमाग लड़ा के करूं, और ये प्रोजेक्ट का इंडस्ट्री कुछ फायदा होना चाहिए
0: जी जी। सर मैं बीच में एक थोड़ा छोटा सा डाउट है जो शायद जो यंग है उनको पूछ लेता मैं आपसे, कि सर ने जो एक चेक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपने बताया, प्लेसमेंट जो है वेबसाइट में पोस्ट हो गई है, तो सर ने कहा कि उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए कि सही में वो प्लेसमेंट हुई है कि नहीं हुई है,
1: ये इम्पोर्टेंट है
0: जी जी जी, वर्ड ऑफ कॉशन है ये बच्चों के लिए। एक और मैं सवाल पूछता हूँ, अभी करिकुलम से रिलेटेड है सर, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आप भी MBA के हैं, इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, आप कॉलेज चुनने में ये करिकुलम का क्या रोल है एक कॉलेज चुनने में, आप थोड़ा उसमें लाइट डालिए सर।
2: एक्चुअली में क्या है, उसमें दो तीन प्रकार है। जो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड कॉलेजेस है
0: जी,
2: उनका करिकुलम फिक्स है।
0: राइट सर।
2: वो जो करिकुलम है
0: जी,
2: और IIM का करिकुलम
0: जी,
2: बहुत सारे कॉलेज में सेम ही है।
0: अच्छा,
2: कोई फर्क नहीं है।
0: ओके,
2: क्योंकि ऑल दिस आर अप्रूव्ड बाय AICTE। AICTE अप्रूव्ड है, इसका मतलब उनका करिकुलम सेम ही है।
0: राइट सर।
2: लेकिन बहुत सारी प्राइवेट कॉलेजेस है जो खुद अपनी डिग्री देते हैं
0: जी सर,
2: तो उनका क्लेम ऐसा रहता है कि हमने इंडस्ट्री से बात करके एक करिकुलम ने मॉडिफिकेशन किया है।
0: राइट सर।
2: और उसके वजह से आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा।
0: राइट सर।
2: ऐसा वो सोचते हैं
0: जी,
2: लेकिन सचमुच ये हुआ क्या नहीं है
0: जी,
2: ये चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो मॉडिफिकेशन है ये बहुत डेंजरस है, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा, अच्छा।
2: कि सचमुच इसका असर इंडस्ट्री के ऊपर हो जाएगा क्या, विद्यार्थियों के ऊपर हो जाएगा
0: जी,
2: कि ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर हो जाएगा। इसलिए करिकुलम चेंज करना
0: जी
2: बहुत मुश्किल बात है, ऐसा मैं मानता हूँ
0: जी।
2: इसलिए प्राइवेट कॉलेज में जाने के पहले
0: जी
2: एक करिकुलम आप देख लीजिए
0: जी,
2: लेकिन करिकुलम का अल्टीमेट इफेक्ट जो है
0: हाँ,
2: जॉब जनरेशन में होता है क्या नहीं है, ये देखना बहुत जरूरी है।
0: ओके ओके।
1: उसका रिलेवेंसी चेक करना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सर आपने बताया।
0: मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों के लिए जो यंग है, एक जो है प्लेसमेंट की बताया, जो पोस्ट की है उसको आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए अपने तरीके से। दूसरा जो करिकुलम जो आप बता रहे हैं, करिकुलम जो इफेक्टिव है कि नहीं कॉर्पोरेट लाइफ में, वो भी चेक कीजिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अभी नेक्स्ट पॉइंट होता है, सेवेंथ पॉइंट हो रहा है एलुमिनी नेटवर्क एंड फीडबैक। एलुमिनी नेटवर्क का फीडबैक, मुझे समझो एक्स वाई जेड कॉलेज पता चल गया है और मोरल लेस समझो मैंने डिसाइड कर लिया है कि ये यहाँ पे मैं एडमिशन लूंगा। अब मुझे लास्ट चीज होता है कि मैं अभी किसी से बात कर लूं जो ऑलरेडी पढ़ के निकला हुआ है।
1: Correct,
0: कि भाई कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट कैसी है, करिकुलम कैसा है, स्टैंडर्ड कैसा है, वो कहना। अब वो पता कैसे चले? तो इसमें आप स्टूडेंट सोचेगा जिसको एडमिशन ले, वो सोचेगा मैं कैसे पता करूं, मुझे मालूम नहीं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है।
1: Correct.
0: आप जो भी कॉलेज पे जाएंगे वहां पे उसके एलुमिनी के ग्रुप होते हैं, उसमें आप जाके अटैच कीजिए, एक क्वेश्चन पोस्ट कीजिए और एक वर्ड ऑफ कॉशन कि कम से कम 4 से 5 लोगों के जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनसे बात कीजिए।
1: right,
0: और उनके फीडबैक पे बेस्ड पे अपना डिसीजन आप फिर ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपकी क्या राय है बाजी सर?
1: एकदम सही बोला सर आपने। नाउ वी आर इनटू द रिवोल्यूशनरी पीरियड,
0: राइट?
1: डिजिटलाइजेशन में हम लोग है
0: जी जी,
1: है ना? तो इन्फॉर्मेशन निकालना बड़ी बात नहीं है
0: जी जी।
1: इफ समबडी डिसाइड्स आई वांट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ही कैन गेट।
0: राइट राइट,
1: है ना? तो एल्युमिनियम नेटवर्क जो है, जैसे फेसबुक में भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं
0: जी,
1: आप कुछ क्वेरी पोस्ट करो तो डेफिनेटली लोग रिप्लाई करते ही है।
0: यस यस यस यस।
1: तो आपने बताया वो सही है, वो एक हो गया एल्युमिनियम नेटवर्क
0: जी।
1: और दूसरी चीज है वहां पे आपको फोन नंबर भी मिल जाता है
0: जी जी,
1: है ना? तो यू कैन पुट 1 or 2 फोन्स
0: जी, जी,
1: कुछ
0: जी,
1: 3-4 लोगों से बात कर ले
0: जी,
1: तो डेफिनेटली लोग बोलते हैं
0: जी, है जी, जी।
1: तो वैसे फीडबैक लेंगे
0: जी,
1: तो मुझे लगता है आपको पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगा।
0: वेरी क्लियर। इसमें मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं जिस कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ इस शो पे, ऐसे नेगेटिव कुछ नहीं है, पर मैं 15 साल बाद उस एलुमिनी नेटवर्क से मैं कनेक्ट होना चाहा, तो मुझे केवल

0: हमारा ब्रांड ऑफ द कॉलेज, सेकंड है
1: रैंकिंग,
0: थर्ड आ जाती है एक्रेडिशन, मतलब AICTE से जो एक्रेडिशन है ना, अप्रूवल है गवर्नमेंट का वो,
1: राइट, एंड फोर्थ है अफोर्डेबिलिटी,
0: यस, और फिफ्थ आ जाता है प्लेसमेंट्स,
1: एंड देन सिक्स्थ है करिकुलम,
0: और सेवेंथ हो जाता है एलुमनी नेटवर्क एंड फीडबैक,
1: राइट जी। तो ये मेरे ख्याल से 7 चेक पॉइंट है जो बहुत ही मायने रखते हैं, किसे कौन सा कॉलेज, मुझे कौन से कॉलेज से एमबीए करना है ये डिसाइड करने के पहले
0: जी।
1: तो ये 7 पॉइंट पे हम लोग थोड़ा क्रॉस चेक कर ले, मुझे लगता है कि सही जवाब हमें मिलेगा,
0: राइट, उसके बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। अब आखिरी पॉइंट आ जाता है लोकेशन। लोकेशन पे अगर मैं कहना चाहूंगा, लोकेशन इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट,
1: राइट,
0: कॉलेज सही है, सब कुछ सही है, 7 चेक पॉइंट में सब में टिक टिक टिक आ जाता है।
1: हाँ।
0: तो मेरा है अंडमान निकोबार भी आपको जाना पड़े, समुद्र के बीच में भी जाके पढ़ना पड़े,
1: हाँ,
0: तो आप जाके पढ़िएगा। अतुलका सर, आपका क्या ओपिनियन है लोकेशन?
2: लोकेशन आप जैसा सोचते हो, बाकी सब पॉइंट ठीक है, लोकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ
0: जी सर,
2: लोकेशन बिल्कुल ऐसी जगह में हो जहाँ अच्छा खाना नहीं मिलता, जहाँ ट्रांसपोर्ट बहुत मुश्किल है
0: जी,
2: वहाँ जाना भी ज़रा रिस्की है,
0: जी।
1: तो ऐसे नॉर्मली अच्छे, जैसे मतलब 7 पॉइंट में कोई यदि टिक मिलता है, है ना, ये सेंसर मिलता है, जैसे रैंकिंग हो, नेम हो, एक्रेडिशन हो, तो मुझे नहीं लगता उसका लोकेशन ऐसे लोकेशन पे होगा। आपने बताया वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सी कैटेगरी के जो कॉलेजेस है जो ऐसे लोकेशन पे है जैसे अंतुरकर सर ने बताया, तो डेफिनेटली आप सोचो कि करना है नहीं करना है वहाँ पे।
0: तो दोस्तों, आज की सीरीज के लिए आज इतना ही। मैं अभय चौहान और मेरे साथ हैं राजेंद्र बाजी सर और अंतुसगर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप क्लोजिंग कुछ बोल सकते हैं, एक मिनट?
2: पहला आप सोचिए कि मुझे एमबीए करके सचमुच क्या हासिल करने का है।
0: जी जी जी,
2: सचमुच आपको सिर्फ मैनेजर बनने का है कि सचमुच अपने हाथ से कुछ काम करने का है?
0: जी जी सर,
2: अगर आप काम करने को तैयार नहीं है तो एमबीए होने की कोई जरूरत
0: जी
2: नहीं।
0: जी, थैंक यू सर, थैंक यू अंतुरकर सर। और दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण, इसके पूरे डिटेल में अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपकी क्वेरी हम आपका जवाब देंगे। व्हाट्सएप का नंबर है, नोट कीजिए, 7798460460। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 7798460460। थैंक यू वेरी मच अभय चौहान की तरफ से।
1: थैंक यू वेरी मच राजन बाजी।
2: थैंक यू सर।
0: थैंक यू।
1: थैंक यू।

0: श्रोते हो, हसी का हंगामा, कहकहों का खजाना, ज्याला आपण म्हणतो तो म्हणजे हास्य तरंग.
1: एक था गरीब सब्जी वाला आणि एक थी परी महिलों की सब्जी वाला. महिलों की परी नवंबर की ठंडी में जब वो गई मंडी में, सब्जी वाले का उड़ गया होश. नरम नरम लाइफ में गरम गरम जो
0: कार्यक्रमात आम्ही आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहोत.
2: Hee hee hee hee hee.